मैं गम करूं तो परेशी जी ऐसे नहीं बोले मुरुकुलो मान अब माँ कुलो ना माँ की माँ जी बाबा माँ रीड ऐसे बे बे बे ओयो